साल का जो होली सेलिब्रेशन ये करने वाले हैं, अगर आपने अभी कुछ नहीं प्लान बनाया है तो आप आ सकते हैं और कल हम मिलकर साथ में होली सेलिब्रेशन करेंगे. और हैव टू बी 100% फॉर टुमारो. यस डेफिनेटली ब्रो, 100% फॉर टुमारो. लेट्स सी, अभी आई विल गो होम. दिस इज माय प्लान. ओके, जस्ट इमेजिन दिस. एक पोट उठाएंगे, पेन पे रखेंगे, गैस ऑन करेंगे, थोड़ा सा तेल डाला, थोड़ा सा, बहुत बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अनियंस, रेड अनियंस काटेंगे, चक इट इन देयर, चिलीज, मेरे गार्डन में कुछ रिली. स्टॉप मेकिंग मी लाफ गाइस. हमारे गार्डन में कुछ रिली नाइस चिलीज है, उसको काटेंगे, चक इट इन देयर टू. थोड़ा फ्राई हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं. उसमें फिर हम डालेंगे फिजी का मसाला नूडल्स, थोड़ा डाला, पानी अभी नहीं डाला हमने, थोड़ा फ्राई करेंगे, मसाला काट कर ऊपर से डाला, थोड़ा मिक्स किया ताकि मसाला जो है ये प्याज के साथ मिक्स हो सके. फिर हम डालेंगे गर्म पानी, ज़्यादा नहीं, डोंट नीड टू कवर इट, बट थोड़ा सा डालेंगे. जैसे थोड़ा बॉयल होने लगे, इसमें हम पकचोए, सॉरी शर्मा, आई नो यू डोंट लाइक कैबेज एंड पकचोए, बट इसमें पकचोए हम डालेंगे. और जैसे ही बॉयल होने लगेगा, क्योंकि पकचोए तब तक पकचोए पकचोए जो भी आप बोलते हैं यार फीजे में, तो उसको कैबेज ही बोलते हैं, नरम हो जाएगा, उसको हम निकालेंगे, एक फ्लैट प्लेट पे रखेंगे ताकि जल्द हो जाए. और उसके ऊपर से हम डालेंगे क्या, नींबू, लेमन. ना ये हॉट वाला मील अगर हमने जीपीओ को खिलाकर ठीक नहीं किया तो आप हमारा नाम बदल देना. एनीवेज, नाम नहीं बदलना. सोनी शर्मा, हाय, हाउ आर यू सोनी जी, वी हैव टू सी यू सून. हमने सुना है कि मेरा पिया घर आया, ओ सोनी. अभी तो आपका, अभी जो पिया जो लेकर आए हैं तो अभी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ना. वैसे हम खाने की बात करते हैं, डेडी माइंड, जो लेकर आए हैं अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते नेक्स्ट वीक तक, पर नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे आपको जरूर. निकेश नंद जी उधर राखी वायरुकुर राखी से हमारे साथ शामिल हो चुके. निकेश जी, आपसे हम बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं जब हम फिजी आएंगे संगम टूर्नामेंट के लिए. यस, 20 सालों बाद आपके भाई आ रहे हैं. वैसे तो I go to Fiji every year, but after 20 years, I'm coming especially for this. So I'm looking forward to that. I'm very excited. I don't know, ye jo 46 year old hai, ye kab tak body will play, but hopefully it lasts. Or yeah, I'm excited for that. वैसे कल जितने लोग free है, अगर आपको मौका मिले, जी भी आज will be well after that. Yes, bro, 100%. 100%. और कल आप आ सकते हैं, हम आपके साथ मिलकर यहाँ पर, यानी जो होली का सेलिब्रेशन है. वैसे जो लोग, मैं काफ़ी देर से बता रहा हूँ, जो लोग आ रहे हैं, आपको आना है. होली सेलिब्रेशन ये हो रहा है विक्टोरिया पार्क रंगीवरा से. और इस पर्सन को अगर आपको इन पर्सन देखना है, देख लो भाई, देख लो, सेलिब्रिटी इन एक्शन. यस, ये पर्सन भी हमारे साथ वहाँ पर रहेंगे, तो आप ज़रूर जुड़ सकते हैं. और कुछ लोग हमारे साथ उधर ऑनलाइन जुड़ रहे हैं. रक्षणा जी, हेलो जी, हेलो माय फ्रेंड आरआरसी जी, कैसे हैं, आपका हम स्वागत करना चाहते हैं. विमलेश विनय प्रसाद जी, भाई जी, राम राम, वेलकम टू. यस, डेफिनेटली हम आ रहे हैं, बहुत ही जल्द आ रहे हैं, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड, यू नो, इस फिजी में आने के लिए, आप लोगों से मिलने के लिए, इस टूर्नामेंट में पार्ट लेने के लिए. वैसे फ्राइडे आज, जैसे हमने कहा कि काफ़ी जगह पर रामनवमी के सेलिब्रेशन, गॉड इज़ रेडी फॉर यू, डेफिनेटली आ जाएंगे भाई. अभी रामनवमी चल रही है जगह पे, तो काफ़ी लोग रामनवमी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं. और निकेश जी, हो सके तो भाई अपने जो त्रिकुट ग्रुप, इसके बारे में भी हमें बताइए ताकि लोग और भी जान सके. और अभी आप लोगों ने एक नया जो नाच सीखा है, त्रिकुट नाच, जो हमें देखने को मिलेगा, प्लीज़ डू लेट अस नो, ताकि जो लोग फिजी में इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी पता चले. जी हम बात कर रहे थे कि अभी रामनवमी, याद रखिए रामनवमी आज से शुरू हुआ है, इट विल गो ऑल द वे टिल 27, तो 27 तक प्लीज आप लोग, खास तौर पर जितने लोग हैं क्राइस्टचर्च में, आपको पता है कि वी आर सच गुड फ्रेंड्स ना, वी लव ईच अदर, प्लीज डोंट सेंड मी पिक्चर्स ऑफ छोटी, स्पेशली यू इन, आपके जो पति परमेश्वर है, प्लीज डोंट सेंड मी फोटोज ऑफ चिकन फिश एंड ऑल दैट. तो अभी द मोमेंट आई एम लाइक बिग टाइम, यू नो, वेजिटेरियन है, वेटिंग फॉर यू एंड सूर्या इन चर्चेस डांस. ओह या, 100% गोट करी, डक करी, हाँ यार, आई लव दैट फूड. तो यस, याद रखिए ये सब आपको कल मिलेगा. और कल हम जब हमारे यहाँ क्राइस्टचर्च के टॉप डांसर्स एक साथ स्टेज पे शामिल हो जाएंगे, स्टेज पर आ जाएंगे, तो इनके लिए ज़रूर इस गीत में रिका जी हमारे साथ आ जाएंगे, छोटी श्रुति ये हमारे साथ शामिल हो जाएंगे. सोनी शर्मा, आपका इंतजार रहेगा, क्या पता शायद आप दर्शन दे दें. और दिलेश जी हम सभी मिलकर कल इंतज़ार करेंगे. और साइड में जब ये होगा

यस गाइस डेफिनेटली ऐसे ऐसे गीत के लिए आप लोगों को शामिल हो जाना है रेडियो केजे के साथ. और कल रेडियो केजे के साथ हम मिलेंगे आपको कहां, विक्टोरिया पार्क रंगीओरा, जहां पर होली सेलिब्रेशन, वेयर पॉसिबली द लास्ट होली सेलिब्रेशन ऑफ द ईयर. गाइस क्या है, ऐसे देखते देखते टाइम चला गया, मुझे पता ही नहीं चला. तो चले आज शाम का जो आखिरी गीत हम सुनते हैं, और आज मौसम के बारे में तो पता नहीं है, पर आप जहां पर भी है, जिस जगह पर भी है, जब तक जमाना है, जब तक प्यार है, आप भी अगर आसमान की ओर देखेंगे तो आपको ज़रूर ऐसा कुछ ना कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा. रेडियो के जे के साथ आप जुड़े थे, बहुत ही अच्छा लगा आप सभी का साथ. हम आप सभी को मिलेंगे संडे को, जब हम अपना संडे शो रामायण के बारे में और भी बात करेंगे. रामायण कहाँ तक पहुँचा, व्हाट्स हैपनिंग ऑल इन रामायण, ये सारी जानकारी हम आपको संडे को देंगे. चले इस गीत में हम आप सभी को याद कर लेते हैं. हैव अ ग्रेट फ्राइडे गाइज, हैव अ ग्रेट सैटरडे. हम मिलेंगे वापस संडे को. यू आर लिसनिंग टू रेडियो केजे लोकल. दिस इज योर होस्ट आरजे क्रिस, साइनिंग ऑफ विदाउट द ब्यूटीफुल, द वेरी गॉर्जियस आरजे जीबी.